0: सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियों
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

तिमी नजी के बालो जीवन न तई भन्दा छ्यावा कथा विषय सु कथा केवल प्रेमल मात्र आसना सु कथा सहजैन प्रति विश्वास अनि समाजैन परिवर्तन हो तारा विषयजी प्रसारण लसिमो रीता देरा हरिना कथा तिमी दिनरी नजी अझै मैसी मो चना सा ठोर्बे च्यौना पुस्तक लयर्बे न किताब खे टिरिलो बाहिर विषय तेदे तेदे ना युरिलो सब बेला रह मरा फैमरी मरा दख्या पिले छ्याबरी मिश्री थुनर खै सा दकोई खेबा छले च्योबरी मिहुरी मोरे मोबा थी रीता मुलो थी बिनी किताब मै मैसी खलो नदे थारे तले तर नसैजी दिश्या थिरे बालो थोबा बेले यो छ्याबा बेले यो खास मादिलो नजी नजी रीता दे बालो क्यों दे क्यों छु किताब चैदिलो वा बीमारी न्युजी थिजी न्युटुई मरी नदे बालो धन्यवाद बीमारी क्यों बिनी बेले यो छेउ पारे मो बीमारी बिलो रीता नेटोबा स दिन पे मुस्कान मात्र आतना न जीवन रे नया अध्याय न सुरतै दिना बर्दी बर्दी सी याजी ये यौलो थोई मरी तासे मरी चिप दे लम्लो रीता दे बालो तालबरी मैमलो संसार अझ छाप पारे हम्लो थी न सोचा थे न आत्मा थी न सरलता ताई जियो न से तंदिलो खेमा खेमा न जी न से जियो न दे बालो न्यूम्लो सु माया प्रेम वा तर प्रेम दिवा सजिलो आरेलो तले विषय समाजी सजिलो यो सु आमा दिलो तर नासो छोरी निन्यौलै न ता फैले फैले जी याजी लेदा जसो जी बिम दे लम्लो केमै न्यौलो फरक परिवार भए केमै जी माया प्रेम लबा अपराध हो समाजी केमै न माया प्रेम अस्वीकार दि नासो छोरी छैली तामै थेमरी रीता कुरैमली टिरिम्लो नजे बिनी लेयो मैसा आरो नै बिते तर तर नजी कृता मते थामुलो सता ता विषया न्यौलै न माया प्रेम विषया साचो मुलो सु नि कमजोर तैमरी भौदिला पर दिलो छतै मरी नजी रीता दे न्युइन माया प्रेम विवाह लोई मरी प्रभा आङी माया प्रेम विवाह थलमला लबसे हो माया प्रेम हरी न्यो संसार थलमला लै मरी सोल परी मो थिजी नायो खाई मरी हरी क्यों तारी असहमत मो न तयार मो बिजे निजी समाज दे बालो गलत प्रमाण आङीना छ्याबा उदाहरण पिबै वातावरण बनेबारी लै दिवा सुरुलाई दिन त क्या निजी निर्णय लजी नि अभौदिन नि समाज बदली भए लागि ओसो बढ्दी भए बिमारी निर्णय लजी सलिसो यिङलोजी यो नासरी तोइ न तोइ केलल परि बिमारी सुरु लजी पोलमै दे खेमी बा सुरु लजी मृमैमै दे आत्मनिर्भर बने बा तालिम सुरु लजी फ्रेसिमै दे छ्याबा क्या देखे बा कार्यक्रम लजी यिङलोइ न माया केवा सेङलो जुदी बा तामते आङिन चु समाजै न सेवा बन्दिजे यिङलोइ न माया बारी आलोचना तब समाज रि चा दिन त क्या सम्मान रूपारी पैसो बढ्दिजे नासो छोबे कथे मैजी बिनी चुमै होलै न माया प्रेम मात्र आङिन समाज थलमल लबा बत्ती हो रितैन परिवार जे बिनी सुता खोखोजी याजी सु सम्बन्ध स्वार्थी आङिन पवित्र मो बिमारी थेमेजी बिनी खोजे अन्तिमरी तालायो सहमति दि नास थेमै न ओइसो रह्यो निला ब्याताजी तर सब्या केवल न्यौलो छैन मिलन मात्र आङिन समाजै न सोचै न परिवार परिवर्तनै न सुरुवात मुलो तिनी बै दिनरी खैमा खैमाङा रीता थे चोरी म रीता री नजी केवल नै न फ्रेसो मात्र आम्रो थे दिवालो नजी साहसी थु म्रोमो क्री प्रेरणा म्रोमो दे न ता दे तिनी सु ताम बिमोगी साचो प्रेम छ आङी सु समाज सक्या भौदी म साचो प्रेम छ हो सुजी समाज से बदली म न हरि दे चु कथा मुलो नदेर रीताला श्री प्रेमला बा जोडी चु समाज हैन उदाहरण बन्दीबा चु कार्यक्रम दि विषया मर्सिङ दिन नासपालिका तीन लमजुङ्गरी मुबा हर्सिङ कम्युनिटी क्याम्प साइट जी प्रायोजन लै म केमे हर्सिङ कम्युनिटी क्याम्प साइट घुम्दिबा यही विषया सूरी केमेजी मनासलु बौद्धा डाक्टर हर्का हिमालचुली लगायत पे लेयो इन श्रृङ्खलामै चोलियो म सुदक्या केमेजी दुधपोखरी समावे पदयात्रा समेत लालखामु चुख्लो राष्ट्रिय विभूति भक्ति थापा कोलमेरी नमाख्यो हो चुख्लोरी केमेजी अर्गानिक चबसेमे चलियो मो लोकल नगैसा लोकल पा पाते पैगो पोलो सुगुडिस्या
च्याउ तायो अर्गानिक चलियो म चुकलोरी केमे तायो थुमे बालो तैमरी पिकनिक बिने याल खामो खर्सिङ याबै लागि बोलेर जीवैना सुविधा बिने म चुरी फ्री वाइफाई बिने म चिसो लला तायो क्युइन व्यवस्था बिने म चुरी परिवारमै घुम्दीबार याबै लागि बिने पारिवारिक वातावरण बिने म

मिन जीवन भोगाई मात्र हारेन आशा संघर्ष दिएर प्रेमैन यात्रा बारेरी हरिदेर रितैन पवित्र प्रेम कथा न्याउलो जाना माझरी मुभा माया सीमित रूपरी आतन समाज गर्वे सोच दिएर दृष्टिकोण दे परिवर्तन लभा प्रेरणादायी उदाहरण मुभा कथा सुप्रेमजी उइबा साँचो माया केवल सम्बन्ध मात्र आतन परिवर्तनै न शक्ति बिनी निभायो तिनी बे कथाजी केमै न सेबिनी सुई होला विवाह विश्वास कि म सार खबर श्रृंखला रे बिनी अझ यो छैले जीवन रे वास्तविक तेर भावनात्मक कथामै पोइरखमो तिनी केमै जिङ एबाचु कथा पारेयो केमै न जीवन रे बिनी छैले बिला आखा बा कथामै म मानी तारी विषय केमैजी केमै सेनो पे तामै दे छले लोएर थिला आपर्दी तले विषय पोवा विवाह कमजोर आङिना स्ने हलुका लबता हो आफै न सेनो बे ता विवाह आत्मै न मैला बा पारेयो सु सोचदे बालो सेनो बे ता केमै न सेनो बे ता विवाह सुरक्षित जो बन्दिल खाबा निन चाहना हो केमै न कथा विवाह लागि से हल्का लबै लागि केमै न कथा तारा निरे बालो विवाह प्रेस लदो केमै जे बिनी केमै से नोबे कथा रे निरे बालो फ्रीमारी पिमिल खामो केमै न कथा निमारी अरुदे बिनी हिम्मत तल खामो सहारा बन्दिल खामो तले विषय क्रिय कथाजी अर्कै न से छैल खामो जो विश्वास से बालो तिनी बे श्रृंखला चुरायो अन्त्यलमो सु कार्यक्रम दि विषा मर्सिङती नासपालिका तीन लमजुङ्गरी मुभा हर्सिङ कम्युनिटी क्याम्प साइट जी प्रायोजन लै म केमे हर्सिङ कम्युनिटी क्याम्प साइट घुमदिवर यही विषा सूर्य केमेजी मनासलु बौद्धा डाक्टर हर्का हिमालचुली लगायत पे ले श्रृंखलामै चोलियो म सुतक्या केमेजी दुधपोखरी समावे पदयात्रा समेत ललखामु चुख्यो राष्ट्रिय विभूति भक्ति थापा कोलमेरी खो हो चुख्योरी केमेजी अर्गानिक चबसेमे चलियो मो लोकल नगैसा लोकल पा पाते पैंगो पोलो सुगुडिसिया च्याउ तायो अर्गानिक चलियो मो चुख्योरी केमे तायो थुमे बालो तैमरी पिकनिके बिनी याल खामो खर्सिङ याबै लागि बोलेर जीवैन सुविधा बिनी मो चुरी फ्री वाइफाई बिनी मो चिसो लला तायु क्युइन व्यवस्था बिनी म सूर्य परिवारमै घुम्दिबार या भए लागि बिनी पारिवारिक वातावरण नै बिनी म

0: कार्यक्रम से नोर्वे ताइन छैटौ श्रृंखला तीन बे लागि छ गयो छलयो हरेक बुधबार निनर्वे आठ बजे क्यामैना से नोर्वे ता मजी कार्यक्रम से नोर्वे ताँदक्या खेब लमो क्यामैना भावना दे स्वर पिबा लमो टेलिभिजन चायो भावना नेलियो बा अधिकार तानायो मो अन्तिमरी से नोर्वे ता निमारे टिबा तायो थुमदे हार्दिक धन्यवाद बिमारी फेरि अर्को श्रृंखलेरी अर्को थुइन से नोर्वे ता पोइमारी खबा प्रतिबद्ध दे बालो चु कार्यक्रम री प्रविधि क्या साथ पीबा प्राविधिक छु दिलु दे धन्यवाद पीमारी न खुशी माया तमुसे बिनी बिदा किमो रेडियो मर्सिङदी 95 मेगाहर्ज गेरिन दे लत ओ छाजलो
1: सेरबेता सबदरी फेरिसु से नोर्वेता खुशी माया दिबालो।